नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः।

ॐ श्री साय साधुमानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साय साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साय सकल संशय हरा

राधा के नटवर लाल कन्हैया, गोकुल बाला गोपरिपाला, राधा के नटवर लाल कन्हैया। नंदकुमार